लम्हा जरा गौर से सुनिए। कामयाबी का मियार सिर्फ दावा नहीं बल्कि नतीजा हो तो फिर नाम याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम। मुख्तसर अरसे में बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी, शानदार नताइज। हालिया मेट्रिक बोर्ड इम्तिहानात में जिला भर में पहली पोजीशन के साथ साथ 117 तलबा में 112 तलबा की A1 ग्रेड में कामयाबी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इदारे के पहले बैच के 2 तलबा का यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पिशावर में मेरिट पर दाखिला। यही है मियारी तालीम की पहचान। राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में नर्सरी ता एफए, एफएससी, प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की बेहतरीन तालीम, जदीद साइंस।

0: सहर में सरोशुम
1: हेलो वही
0: सहर में सरोशुम दो पत्री मुले हो
1: बेगा में मर पखोबली दले सहर में शुंड पत्री निवले उना

याद क्यों नहीं बिछड़ जाते। लोग तो पल भर में बिछड़ जाते हैं, कभी फुर्सत मिले तो इतना जरूर बताना। कभी फुर्सत मिले तो इतना जरूर बताना, वो कौन सी मोहब्बत थी जो तुम्हें हम दे न सके।

0: अब तो शायद ही मुझसे मोहब्बत करे कोई। अंकों में तुम नजर आते हो।
1: मंगल।

0: मगर उस पे समझने वाले समझ जाते हैं, हर कोई नहीं समझते। जरा गौर से सुनिए। एक बार यूं हुआ था, वो मिली मैं उसको मिला, फिर इजहार हुआ और इकरार हुआ, वो चाहने लगी मैं भी चाहने लगा। बहुत मुझे भी मोहब्बत थी बहुत,
1: मुझे तुम,
0: फिर कुछ यूं हुआ वो छोड़ गई मुझे, मैं भी भूल गया उसे। फिर मिले कुछ यूं हुआ, वो तन्हा थी बहुत, मैं अकेला था बहुत, अश्क थे और बस हम थे, वो रोने लगी मैं भी रोने लगा, मगर न प्यार था न इतना था, मैं मिट्टी की फर्क बस इतना था, वो मिट्टी की ऊपर थी और मैं मिट्टी की नीचे था। एक बार यूं हुआ था।

0: साथ छोड़ने से पहले ये सोच लेना हम तितली जैसे हैं। साथ छोड़ने से पहले ये सोच लेना हम तितली जैसे हैं, पकड़ कर छोड़ेंगे तो मर जाएंगे।
1: मिलने बिछड़ने की मेरा तन मन।
0: आपको याद है हम बचपन में हम तितलियां पकड़ते थे, हम जब तितली को पकड़ते थे ना, अगर फिर उसको छोड़ भी देते तो वो मर जाती थी क्योंकि वो उसके पर काट देते थे। बचपन में इसी तरह हम करते थे, वो छोटी छोटी तितलियां नहीं हम पकड़ते थे ना, जब उसको पकड़ते थे तो फिर वो मर जाती थी, वो दोबारा उठने की काबिल ही नहीं होती, कितनी उसके फर इतने नाजुक थे कि हम फिर वो उड़ ही नहीं पाते। साथ छोड़ने से पहले ये सोच लेना हम तितली जैसे हैं। साथ छोड़ने से पहले ये सोच लेना हम तितली जैसे हैं, पकड़ कर छोड़ेंगे तो मर जाएंगे।
2: देखिए रासे
0: वल जना वल वल वल वल वल वल प्रोमो हम नहीं चलाते, इस तरह करते हैं कि आपकी कॉल लेते हैं, ठीक है। रोना धोना छोड़ दे भाई, काल लेते हैं, काल काल काल। वाल जनाब सरताउन सले नो इंचन पासवर्ड पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड। वाल जनाब पागे के मुंग रख राखली दी आर में दिखरे द नो टेंशन गो गोल्ड रावाख ले मखन तीर सरिख्तिया दावरी का इस्तेमाल नो टेंशन पे स्वाश से आवारी, नो टेंशन राइस पे स्वाश, नो टेंशन विटामिन सी पे स्वाश। द वेख्तु खुशके द पारा वेख्तु बाधीगी वेख्तु खिरंदी वेख्तु दीगी ना नो टेंशन तेल और शैम्पू रावाले सनब्लॉक रावाले जमा लिस्टर बखा मखा यो सनब्लॉक इस्तेमाल बियाबा होते हैं सब होते हैं सनब्लॉक मर उड़े तासे बे बिया रोड़े जान लकोल क्रीम रोड़े मिल वालों द उस नखपोल शोरों के जिस खपोम खुली सफावी सुतरे भी खुली द चाचे खपे सफावे दागल ज गारंटी वर्कुम दाग स्किन तबाही सामने की। वाल जनाब दाइयो अस्सलाम वालेकुम। खैर अल्लाह करम सो कर कम जेरा खैर आलिता सार बांगुर माल मैसेज अकाल शोरों कड़े मैच वैखलम अना पखेर तरबेले किसे कवे।
3: हेलो
0: मैं तरबेले किसे कवे
3: बस तरबेला
0: की उसी मैं तरबेला और डेम ने राजे देखो सवाबे तराजे
3: भाई।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बना

0: ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का, इशारिया चार खुद।
1: यौनिम सरोकाब राशालेका द्रेव सोकाब राशालेका द्वित वाचा नेमवान वर्तमान के द्वित्री दाने वाचा शब
2: या लक्का सेद गानी राजा दा कबाब को मुंग बांधी डीर दी लेमु में पे हम न छोड़ कड़े दे
3: न गुल काका ता सुखरे अमीर आवल गलम मेहमानो ल कबाब पड़म
2: राजा यो कबाब मुंग सरो खरा छ दखले खवान दे वर सर खशी
3: न गुल काका जमा पाल दे मेदा के में जख्म दे पूर पकी बलीगी हजमा में नाराजी
2: गोरा सेवनी दे ब्या खराब करता है हम उस लाड़ से आओ दो बड़ाग्राम हर मेडिकल स्टोर या जर्नल स्टोर सेट गो दमेदी सिरप रावाखला द कम इस्तेमाल न बाद के उस पने
3: गुल काका मेदे उस पने न हजमई होता सिरा तहकारी छे दमेदी डेर खब होतल ले जुका होता था सत्रे कबाब प्राती दी गुल काका दानु मोरंगी रात ब्याह हुआ या छे सुख बदल सिरप प्राने की
2: नुमिये एसेट गोदे शिन रंग के पे मैदा जोड़ा ला औ द बटाग्राम हर ख मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर के खप आसानिया सरा मिलावेगी दानुमिये उलिका एसेट गो चेहर डरना निशी
3: गुल काका द स्पेलिंग रात हूँ हुआ चिवी लिखम
2: जदर तवायम तई लिखा ए सी आई डी जी ओ एसेट गो एसेट
4: کچ رستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نفس مو پ میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوے میدہ کی مو زخم یا تیزابیت وی نہم اس زان لا دمنلی شوی کمپیدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے کم چی د ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور سانتیا سرا ملا دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: सके पता याद चाहते न्यू सदाबहार बेकरी एंड सुल्तान जनरल स्टोर
1: मसाले रहो खाए करना मुसलमान दुख दे वो तमंग दिदा से तरस कुन
2: समोसो आन नर्ख मिलावी ही अब लदाची हर चाला दहगुई पखवखा मसाले हम तैयारवी फाइल खान मसाला जात बटग्राम फाइल स्टोर की मिलावीगी दो तहसील बटगा बांडीगो कुजब मेरा बाजार पिराड़े किला बहराम खान जुसोल बाजार बटमोड़े इलाका देशान ताकोट और पकनीर आसानी सरा मिलावीगी ददीन अलावा 75 प्लेन बाजार और दिलहर तहसील की हम मिलावीगी कुम खलक चिद बटाग्राम बाजार तराजी नुहवीद नहुम यौद अल फखर होटल लांदी और बल यूनाइटेड मार्केट तमखामख फैसल मार्केट की औ कपत दर न गलती की न पायल खान सरा पदी नंबर और राबिता कवा 03
3: और साग दर सिले उड़े दे
4: लकारनो बेदमशम पपाटो औ जिसम में दर दुनिशी
3: औ द बटाग्राम हर ख मेड जनरल स्टोर की एनर्जी टॉनिक मिलावेगी पावर एक्स एनर्जी टॉनिक खुख्याल कवा लबदल शरबत दर निकली और इख्तियार दहागे पहचान

0: कॉलेज बटग्राम में, जहां तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं बल्कि किरदार साजी, अखलाकी तरबियत, एतिमाद और क़ियादत की तामीर भी हमारी अव्वलीन तरजीह है। नर्सरी से लेकर FSC तक मियारी इंग्लिश मीडियम तालीम, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स के बेहतरीन प्रोग्राम, काबिल और तजरीबाकार असातिज़ा इकराम, जदीद तदरीसी तरीक़ेकार, कंप्यूटर और साइंस की जदीद लेबोरेटरियां, पुरसकून और महफूज तालीमी माहौल, तलबा व तालिबात के लिए मियारी व महफूज ट्रांसपोर्ट की सहूलत, तालिबात के लिए कॉलेज सेक्शन में अलीहदा क्लासेस का इंतजाम। यहाँ निसाबी तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों, ज़हनी व जिस्मानी नशोनुमा और अमली तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। महदूद नशस्तों पर दाखले जारी है। अपने बच्चों के बेहतर तालीम तरबियत के लिए कल नहीं आज ही तशरीफ लाइए स्काई हॉक इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम, जहां ख्वाबों को मिलती है कामयाबी की परवाज।
1: ग्रानो औरिदुन को तसो आवाज और रेडियो अमन 88.4 बटग्राम।

0: है मोहब्बतें समेट की एक नाने का, एक नई दुनिया बना। ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, बिछड़ों को मिलाने का, मिलाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहो।
1: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 पर किया।
0: ग्रानो रिदुन को तसो आवाज अवरेद रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम।

द्वकदमा फासिलवा द्वकदमा फासिलवा दगजल नवि सिंगारा बगलोल योल प तयारा दगजल